0: बिना देखे तोहमत लगा देती है ये दुनिया, इसलिए जरा।
1: ओ तो क्या इसलिए मेले में आई हो? बोलो मेरे साथ चलती हो कि नहीं?
0: हजीवा तुम तो ऐसे रोब दिखा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी बीवी होती हूँ।
1: तो ये बात है,

0: सुना आपने गीत?
1: जहाँ तुमने सुना।
0: रात को भी आप यही गीत गा रहे थे, क्यों गाया करते हैं आप इसे?
1: इसलिए कि तुम इसे पसंद करती हो।
0: नहीं, क्यों परेशान करते हैं आप मुझे?